प्रसाद से आप और मैं यहां पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है, सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। दुर्दास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही, विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए, किसी किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है, जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई, ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार। जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए, दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए, वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है, वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है, संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है, और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती। यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं, दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं, आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण, अपनो रस लिए रहे और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है, उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। परदोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे, बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले, भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। हम आज तो संसार में ही रमे हैं, हम जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो, जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है, सीखिए समझिए। चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे, अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा, कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है, वो आवश्यकता से अधिक चाहता है। और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल विहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है। उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। ले क्यों?
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट न करें। अब नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहां ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागे हो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

कह रहे हैं रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीत के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझकर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एक आदर्श स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते, श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है,

प्रिया जी की जो टहल है, जो सेवा है, ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है। और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर हो जाई। हे, मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता। ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले, जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए।

0: निखर हूँ।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। धर्मराज जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो देवदास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई,

अहम भक्त पराधीन है, यहाँ उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद, साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लागे है ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और GDP में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग आपको, पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस में नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हां बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा, कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है। मैं बताता हूं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या? लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, अब हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो का अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1 बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया। पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है। ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन एटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया। और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो। इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है। डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योरसेल्फ। निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का। फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए। 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेट योरसेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। बिकम अ सेल्फ लर्नर, लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टॉक, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ।
2: यस बॉयज एंड गर्ल्स, सैक्रिफाइस सोशल लाइफ,
1: अपनी सोशल लाइफ को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है। आपके जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, यह आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बाग करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड यूर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बींग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पांच प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: शानदार सुट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों नहीं है, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा, क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: Thank you.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की

0: इसे जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए बात करते हैं वेदर अपडेट की। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें 33 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 10 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलेगी आपको 66%। अगर घर से बाहर निकल रहे ना तो अपने साथ एक अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिए, बिकॉज मौसम का कुछ नहीं पता, कभी आंधी, कभी तूफान और कभी अच्छी खासी धूप। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी। सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं।

शानदार सुरक्षा के साथ मैं फिर से लौट आई हूँ आपसे करने ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर चंचली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। लेकर सुबह 7 बजे आ गई थी, लेकिन अब फिलहाल लेकर आ गई फिटनेस वाला फंडा, ग्रीन खाओगे तो स्ट्रांग बनोगे। ये इसके पीछे की आइडियोलॉजी और स्पिनच के क्या फायदे, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। आयरन से भरपूर होता है, यानी कि हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। इसके अंदर आपको मिलता है विटामिन ए सी के, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। साथ ही स्किन और हेयर के लिए ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो भाई बहुत सारे फायदे तो हैं इसके, और बचपन में शायद पालक पसंद ना हो, लेकिन अब हेल्थ के लिए ये सुपर फूड में कंसीडर किया जाता है। तो आप इसे जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। और डाइट में इंक्लूड करने का ना एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कुछ रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ आइडियाज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। आप पालक पनीर ट्राई कर सकते हैं यार, उसमें तो पालक वाला वो टेस्ट ही नहीं आता। ग्रीन स्मूदी बनाइए और हेल्दी हो जाइए, या सिंपल सा साग एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म मक्के वाली रोटी के साथ। आई नो सर्दियां जा चुकी है, लेकिन एंजॉय तो किया जा सकता है, क्योंकि हेल्दी खाना ही रियल वेल्थ है, ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो इस चीज का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

शानदार जुड़वे के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। ये लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक एनर्जी है जो दुनिया को बेहतर बनाता है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि रियल लव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो काइंडनेस और कंपैशन को दिखाता है, साथ ही रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन कहलाता है, और इतना ही नहीं पीस और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना इस दिन का मोटिव है, साथ ही डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ये प्यार कहलाता है। वे आज के दिन करना क्या है, जो भी आपके आसपास है, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके एम्प्लॉय, आपके कलीग्स, जो भी, आप सभी को आज अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा कि आपकी जिंदगी में आए, एंड उनकी वजह से आपकी जिंदगी में जो भी चेंज हुआ उसके लिए जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। साथ ही अपनों के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करना हमेशा प्यार को और भी ज्यादा बेहतर बना देता है। इसीलिए कहा जाता है हर चीज में प्यार दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना प्यार दोगे उतना ही मल्टीप्लाई होकर वापस भी मिलेगा, तो उसमें भी अपना ही फायदा है। तो आज एक सिंपल सा प्रॉमिस जरूर ले, स्प्रेड लव नॉट हेट, एंड इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार से ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो हो सकता है अकाउंट गॉन। जी बिल्कुल, वेलकम बैक टू रेडियो मारेनी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। एक ऐसा पासवर्ड जो हमारे ना जाने कितने अकाउंट को सिक्योर रखता है, यानी कि एक दरवाजे के ताले की चाबी। जो अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट कोई नहीं छेड़ सकता, और जो अगर थोड़ी सी वीक हुई तो भाई टाटा बाय बाय। अगर बात करें सेफ्टी की तो डिजिटल सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है, ये तो हम सबको पता है। फिर चाहे बात हो फोन हो, सोशल मीडिया हो या फिर हमारा बैंक अकाउंट, सब कुछ, यानी कि सब कुछ एक छोटी सी चीज प्रोटेक्ट करता है, हमारा पासवर्ड। लेकिन अगर आपका भी पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक अपना पासवर्ड बना रखा है, तो वही बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, समझ लेना कि आपका डिजिटल गेट खुला छोड़ दिया है आपने स्कैमर्स के लिए, फ्रॉडस्टर्स के लिए। आएंगे आपका डेटा उड़ाएंगे और

टाटा बाय कर देंगे। सो माय डियर लिसनर्स, आज एक रियलिटी चेक लेकर आई हूँ। एंड रियलिटी चेक ये है कि जब भी हम बहुत इजी सा पासवर्ड रखते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पासवर्ड के तौर पर रखते हैं ना, तो वो हैकर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है गैस करना। और हमें लगता है कि कोई गैस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं ना, हमारे जैसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो सेम गलती करते हैं। एंड इसीलिए एक कॉमन पासवर्ड पाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस यही बताने आई हूँ आज आपको कि किस तरह से आपको स्मार्टली अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो भाई पासवर्ड ऐसा रखो जो आपको याद रहे पर किसी और को समझ ना आए, जैसे कि मिक्स ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, एक काम जरूर कीजिएगा, आज के दिन अपना पासवर्ड चेक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरा पासवर्ड वीक है, तो भाई तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही आपका असली बॉडीगार्ड होता है। सो माय डियर लिसनर, अपने बॉडीगार्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। पर तुम शेडन लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रीकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। यहाँ आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा सोशल स्यापा जिसे सुनने के बाद ना दिल एक्चुअल में गार्डन गार्डन हो गया। हम इंसान अक्सर सोचते रहते हैं लेकिन ये जो हमारे पर बेबीज होते हैं ना ये वो काम कर भी जाते। मैं बात कर रही हूँ डॉग्स की। जितने भी डॉग लवर है ना इस चीज से रिलेट जरूर करेंगे। और आज ने इमोशनल स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और ये स्टोरी है एक डॉग अपने ऑनर के लिए 24 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने गया। और ये बात किसी को नहीं पता थी घर में। और जब ऑनर अपनी जॉब से वापस आया ना बाहर निकलकर, तब उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसका जो डॉग है वो उसकी कार के ऊपर बैठा हुआ था, अपनी पूंछ को हिला रहा था जैसे वो अपने मालिक को ये बताना चाहता हो कि देखा मैं आपसे मिलने आ गया। लेकिन उसके ऑनर के दिमाग में एक बात है कि इतना बिजी रोड होने के बाद, अननोन रास्ते होने के बाद, इतनी थकान होने के बाद भी ये मुझसे मिलने आए हैं और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। उसे शायद अपने ऑनर तक मिलना था। शायद इसी को प्यार और लॉयल्टी कहा जाता है। और आज की स्टोरी हमें ये मैसेज देती है, ट्रू लव डायरेक्शन नहीं देखता, लॉयल्टी सिर्फ वर्ड से नहीं एक्शन से होती है। और अगर बात की जाए डॉग्स की बॉन्ड की तो ये अनकंडीशनल होता है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक रिमाइंडर है कि रियल कनेक्शन लॉजिक से नहीं इमोशन से बनते हैं। क्योंकि अगर आपके पास भी कोई पेट है तो उन्हें एक्स्ट्रा हग जरूर दीजिएगा आज घर जाकर। बिकॉज कहा जाता है कि हमारी दुनिया में ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी दुनिया हम ही हैं। यानी कि हम जो पेट पेरेंट हैं वो ही इनकी दुनिया है। तो सोच के जरूर देखेगा कि कितना प्यार करते हैं ये। और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: Yeah.
1: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे हंसले आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को बताया, इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है, इसका हमारी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। राधिका जी, अगर बात की जाए सीजन ट्रांजिशन की, तो ये बताइए स्किन और हेयर के लिए इस ट्रांजिशन फेज में क्या बेसिक प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए।
2: स्किन और हेयर के लिए आई वुड से सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम अपनी स्किन को लेके ना बहुत लीनियंट होते हैं, और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आजकल के लोग सबसे ज्यादा करते हैं, मैं उसको बताऊंगी आपको, जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं।
1: जी,
2: टिकी वेदर, आपकी स्किन चिपचिपी है, उसके आप ऊपर केमिकल्स लगा रहे हो, राइट? क्योंकि आज का एक ट्रेंड हो चुका है कि हम इतना ज्यादा मेकअप फ्रीक हो चुके हैं ना, कि हमें घर से बाहर जाने तक भी एक पिक्चर भी क्लिक करनी है तो हमें लगता है कि यार विदाउट मेकअप या विदाउट फिल्टर पता नहीं हम कैसे ही लगते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो ये मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आपको वो बहुत ज्यादा हिट करते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम लोग ऑफिस से आते हैं, लेट आते हैं, पार्टी से आते हैं, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम मेकअप रिमूव करने की जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वहां आलस कर देते हैं।
1: जी,
2: और सबसे ज्यादा ये चीज आपको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि वो जो आपका स्लीप का 6 to 8 hours का जो टाइम पीरियड रहता है ना, उसके अंदर ही आपको बहुत ज्यादा हिट कर जाएगा। जब सबसे ज्यादा स्किन के पास टाइम है उस चीज को रिकवर करने की, उस पूरे टाइम पे हमने उसको वो केमिकल स्किन को दे के रख, ठीक है? आप सोचो, आपकी स्किन के जिस स्मॉल स्मॉल पोर से स्वेटिंग बाहर आ रही है, तो क्या जो आप स्किन पे लगा रहे हो वो अंदर नहीं जा सकता? जहाँ से वो चीज बाहर आ सकती है ना, वो अंदर भी जाएगी।
1: जी,
2: राइट? आपने चलो फुल डे आपका जो पीरियड रहा आपने वो लगाया ही लगाया, उसके बाद अगले दिन फिर आपको मेकअप करना है।
1: जी,
2: आपने रात भर भी लगा दिया, आपने स्किन को ब्रीद कहाँ ही करने दी। सो इस टाइम पे हम गलती बहुत ज्यादा यही करते हैं कि ये वाला, मुझे लगता है आप कोई भी गलती कर लें, लेकिन रात को मेकअप के साथ सोने की गलती आप कभी भी मत करें। तो उस टाइम पे आप सिर्फ 5 मिनट में कहते हो लगते हैं, मेकअप रिमूव करने के बाद आपको अच्छे से अपनी स्किन को, जो लोग स्क्रब यूज करते होंगे, अगर अच्छे से अपना स्किन वो कर दो, क्लीन कर दो स्क्रब से, ताकि जो भी पोर्स उनके अंदर कुछ डस्ट रह गया, कुछ पार्टिकल्स रह गए, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद में प्रॉपर, अगर आपकी स्किन ड्राई है, मैं एक चीज रिकमेंड करती हूँ, कोई भी बंदा जो ड्राई स्किन फेस कर रहा है ना, आपको मॉइस्चराइजर या कुछ भी लगाने की जरूरत है, आप डायरेक्ट बादाम का तेल लगा लो अपनी स्किन पे, इट विल हील यू लाइक एनीथिंग। अगर आपको स्किन ऑयली है तो आप अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्किन को सूट करता है, जो भी मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है, अप्लाई दैट, ताकि रात भर में वो आपकी स्किन को रिपेयर कर दे जो डैमेज आप कर रहे हो, ठीक है? अब ये तो होगी स्किन की आउटर लेयर के लिए जो हमने कर दिया। स्किन डायरेक्टली लिंक टू योर स्टमक, आप अपने पेट में जो डाल रहे हो वो आपकी स्किन पे दिखता है। अगर आप बोलो किसी को एक्ने है ना, इट्स नॉट जस्ट योर स्किन प्रॉब्लम, इट्स डायरेक्टली कनेक्ट टू योर मेटाबॉलिज्म। किनोआ से बेटर आपका देसी दलिया है, आप उसके अंदर वेजेस डाल के खाओ, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरल फ्रूट्स, हाइड्रेशन आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देती है।
1: जी, थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए। एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक,
1: चुप रहो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्चेंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं अकेली नहीं हूँ स्टूडियो में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन फेज की। तो राधिका जी, अगर मैं बात करूँ इस सीजन की, तो ये बताइए कि एक्सरसाइज रूटीन को वेदर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना जरूरी होता है?
1: आई वुड से ऑफ कोर्स हमें अकॉर्डिंग टू वेदर अपना वर्कआउट चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि हीट में आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग तरीके से आपको हीट करेगा या आपको इजी करेगा, विंटर के सीजन में अलग करेगा, मॉनसून में अलग करेगा, ठीक है। अब गर्मी के टाइम पे आप बहुत ज्यादा कार्डियो और बहुत ज्यादा हीट, बॉडी को हीट देने वाले अगर वर्कआउट करोगे ना, वो आपको अनइजी कर सकते हैं। बहुत कम लोग है जो ओपन एयर वर्कआउट करते हैं। आजकल आपके जितने भी स्टूडियोज हैं इनडोर है जी, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आपकी बॉडी, आपने जैसे कार्डियो कर लिया या कोई भी एक्सरसाइज आपने बहुत फास्ट कर लिया, अपनी हार्ट रेट बढ़ा ली, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या है अंदर, गर्म जी, और हम कर रहे हैं एसी में जी, तो हमें लगता है, हमने कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होता इन चीजों पे, लेकिन सोचो वो बॉडी के लिए क्या क्लैश कर रहा है
0: जी।
1: आपका शरीर उस चीज को, शॉक को हर मिनट उसको सफर कर रहा है
0: जी।
1: तो मुझे लगता है बल्कि गर्मी के टाइम पे आपको स्लो, स्मूथ और अच्छा योगा करना चाहिए, जो बेसिकली आपके ग्लैंड्स पे वर्क कर दे
0: जी,
1: ठीक है। कार्डियो करो, बट इतना नहीं कि आपका एसी भी हाई टेम्परेचर चल रहा है और आप उतना ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे
0: जी,
1: उसको उस ट्रांजिट में मत लेके। तभी जैसे लोग बाहर निकलते हैं ना, फिर उनको हिट कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म थी, एसी आपने हाई चलाया होता और फिर एक अलग टेम्परेचर में आप बाहर आके आ जाओ
0: जी,
1: राइट। तो उस टाइम पे मुझे लगता है आपको थोड़ा सा स्लो डाउन, मूवमेंट, ऐसा नहीं कि वर्कआउट कम करना चाहिए, टाइप ऑफ वर्कआउट चेंज कर देना चाहिए, कि बहुत ज्यादा स्वेटी वर्कआउट आप ना करें उस टाइम पे। आप योगासनास प्रैक्टिस कर सकते हैं
0: जी,
1: बहुत अच्छे स्ट्रेचेस होते हैं उसके अंदर, आपके बहुत ज्यादा आपका, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जो वेट लूज करने में हमें लगता है, बॉडी को अच्छा रखने में ना, आपके ग्लैंड जो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस करते हैं वो भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप प्रॉपर योगासना, मतलब मुझे लगता है प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर ऑल सीजन आई वुड से, बिकॉज बीइंग इनटू योगा थिंग, मतलब मेरा तो फेवरेट ही है। बट आप जैसे विंटर्स है, विंटर्स में आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी गर्म भी हुई है तो आपके ऊपर एसी नहीं है
0: जी,
1: राइट। तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी से जितना निकाल लोगे ना, इट्स गुड फॉर यू
0: जी।
1: तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू वेदर थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: शानदार से ट्रेक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो राधिका जी, अब टाइम हो गया एक हेल्थ मंत्रा की, तो आज आप हमारे रेडियो महारानी के लिसनर्स को हेल्दी सीजन ट्रांजिशन मंत्रा क्या देना चाहेंगी?
1: तो मैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, एज अ योगा टीचर, मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, मैं यही बोलूंगी कि आप अपने आप में भी और बच्चों में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि उनको बहुत ज्यादा बाहर के खाने की आदत नहीं हो। कोई भी सीजन हो, आप 80% अगर घर का साफ सुथरा खाना खाते हो और फिर 20% अगर आप बाहर का खाओगे, कभी भी वो आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होने देगी। दूसरी चीज, कोई भी एक चीज अपने लाइफस्टाइल में जरूर एड ऑन करें, इधर इट्स योगा जी और वॉक और जुम्बा, एनीथिंग जो भी आप पसंद करते हो, खुद के लिए भी वो जरूर डालो और अपने बच्चों को आज से ये हैबिट डालो कि उनको भी। आप कितने बच्चों को देखोगे बहुत लेजी होते हैं, बच्चों में आज लेजीनेस ज्यादा है बड़ों से, राइट? तो अगर आपने उनके अंदर आज ये बीज बो दिया ना, तो ये आपके आगे कभी भी आपकी इम्यूनिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो ना, तो आप आने वाले टाइम में जो हमारा टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हो बहुत ज्यादा, ना ही आप जो बाहर का खाना है उसको कर सकते, राइट? बाहर की चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस आप कर सकते हो अपने घर के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर। तो जो आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी है ना, हम बोलते ना कि इसको बीपी है, इसको शुगर है, इसको ये है, उसको वो है, राइट? और उससे भी बड़ी हम बोलते हैं कि सबसे बड़ी हमारी बीमारियां स्टार्ट कहाँ से होती है? मोटापे से
0: जी।
1: आपका वो नाम नहीं है बीमारी का मोटापा, लेकिन हर बीमारी शुरू वहाँ से हो रही है। बट आई वुड से उससे भी बड़ी बीमारी हमारे पास जो आज है ना, लेजीनेस है
0: जी।
1: क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ हम लेजी होते हैं ना, वहाँ हमारा पूरा दिन का सिस्टम बोल लो, आपको प्रोफेशनल पर्सनल सारा सिस्टम हिल जाता है
0: जी।
1: And this message is to the ladies, I would say, क्योंकि घर का और बच्चों का मोस्टली कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में होता है। कि कहते हैं ना कि एक घर की औरत को पढ़ा दो तो सारा घर एडुकेटेड हो जाता है। सेम वे अगर हर एक घर की औरत को थोड़ा सा भी एक लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन की अगर थोड़ी भी नॉलेज होगी ना, मुझे लगता है कि वो अपने पूरा सिस्टम चेंज कर देगी। और एक औरत को वो नॉलेज होने से वो घर के 10 लोगों को इम्पैक्ट करती है। सो लेडीज, सबसे जल्दी इन चीजों को, जितनी जल्दी लाइफस्टाइल की चीजें, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड चीजें, क्योंकि आज अगर आप खुद बाहर का गलत खा रहे हो ना, आप अपने बच्चों को नहीं रोक पाओगे। आप टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हो, अपने बच्चों को नहीं रोक पाओगे, आज के बच्चे क्वेश्चन करते हैं। सो आई वुड से कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, और स्पेशली एक हैबिट तो जरूर हो हर किसी को, 20 मिनट्स हर कोई एक हेल्दी हैबिट, डांसिंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए आपके पास। थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज आपने हमारे लिसनर्स को बहुत फ्रूटफुल बातें बताई हैं, जो हमें इस सीजन जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और बातों का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है, लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। पैरासोट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहे।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

तो बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारी ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो मारानी 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं हम मौसम के बारे में, जहाँ 10:08 हो रहे हैं और मौसम की बात की जाए तो अब कुछ दिन बारिश से अच्छी राहत रही और आज 34 डिग्री सेल्सियस तापमान सुबह 10 बजे ही बना हुआ है। आई हफ्ता भी बारिश की बौछार हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। बात करें यहाँ पे अगर हम AQI की, तो जहाँ फ्राइडे को 97 AQI रहा और बढ़ते बढ़ते 2 से 3 दिन में यही AQI 200 के पार पहुंचता नजर आया कि यार फरीदाबाद शहर की हवा तो साफ होने का नाम ले ही नहीं रही है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, प्लीज जहां भी पॉसिबिलिटीज हैं कारपूल करें, गार्बेज ना जलाएं, पास गार्डन सोसाइटीज में वाटर फॉगिंग करें, अगर इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा है, कुछ मेकिंग वर्क चल रहा है तो डस्ट एंड ऑल को कवर अप करके रखें, जिससे कि शहर भर की हवा साफ सुथरी की जा सके। बाकी ऐसी चर्चा चलती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ बात करते हैं दोस्तों फरीदाबाद शहर में होने जा रही एक म्यूजिकल शाम, म्यूजिकल ट्रिब्यूट, जो कि 18 जुलाई यानी कि सैटरडे को होने वाली है सेक्टर 21 जीवा पब्लिक स्कूल में शाम 6:30 बजे। फरीदाबाद लिटरेसी एंड कल्चरल सेंटर ये शाम लेकर के आ रहा है और इस शाम में म्यूजिकल ट्रिब्यूट रहेगा लेजेंडरी सिंगर्स आशा भोसले जी और सुमन कल्याणपुरी जी को। साथ ही एक श्रद्धांजलि भी रहने वाली है भावभीनी पद्मश्री बशीर बद्र जी को भी। और ये शाम में और भी कई सिंगर्स हमें मिलने वाले हैं सुनने को, शालिन अरोड़ा, शिखर वंशिका, और इन सभी का लुत्फ उठाने के लिए 18 तारीख को नोट कर लीजिए, जहाँ जे पब्लिक स्कूल में जाइए और इस संगीत में शाम का आनंद उठाइए। बाकी चर्चा करेंगे स्पाइक अटैक।
1: Oh, my God.

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी. यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद.
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर.
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409, सेक्टर 15, नियर गेट नंबर 3, फरीदाबाद, हरियाणा. और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट. सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ.

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फॉरएवर। यह सिनेमा के गलियारे में बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन सी नई कहानियां लास्ट वीकेंड सिनेमा घरों में हुई आउट, कौन से पायदान पर हैं रोमांचिक, हॉरर, कॉमेडी, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कहानियों की करूंगा चर्चा। तो कहीं होगा उसी प्लेटफॉर्म का जिक्र, बॉलीवुड से लेकर के पंजाबी, पंजाबी इंडस्ट्री लेके हॉलीवुड तक का होगा धमाल। वहीं आने वाले कुछ वक्त में कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं, इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। नए ट्रेलर और टीजर की किससे कहानियां तो कहीं होंगे फर्स्ट लुक आउट। नई जोड़ियां, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं सिल्वर स्क्रीन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। कहानियों का अलग जलवा तो कुछ होगी अब सिल्वर स्क्रीन के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर का। करूंगे सारी चर्चा, लेकिन सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ और धमाकेदार से गाने।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं इंडस्ट्री की एक बढ़िया कहानी प्रलय के बारे में, जहाँ रणवीर सिंह की ये जॉम्बी थ्रिलर कहानी सितंबर 2026 में फ्लोर पर आ सकती है। इसका मौजूद शूट ऑस्ट्रेलिया में प्लान किया गया और जहाँ काफी एम्बिशियस होने वाला ये स्केल। प्रलय को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और पोस्ट जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर कहानी के रूप में, जहाँ ये कहानी 300 करोड़ रुपए के स्केल पर बन रही है। और अब देखते हैं इस कहानी में कल्याणी प्रियदर्शनी के बॉलीवुड डेब्यू का भी जिक्र होते नजर आ रहा है। ये अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं की गई मेकर्स की तरफ, लेकिन चर्चाएं जरूर होती नजर आ रही है। इंतजार रहेगा रणवीर सिंह की कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट कहानी की रिलीजिंग का, बाकी ऐसी अभी चर्चाएं करता रहूंगा। उससे पहले एक और ट्रैक

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ।

your voice. I am singing song. Soup song.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं जय हिंद जय सिंध कहानी के बारे में। लव स्टोरी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया और रिलीज विंडो अक्टूबर 2026 लॉक की गई। महेश रांजरेकर, जयप्रदा और जरीना फहेबह लीड किरदार में है और फिल्म को इंद्रजीत लंकेश डायरेक्ट कर रहे हैं। एक पार्टीशन है हिस्टोरिकल ड्रामा लव स्टोरी जो सिंधी कम्युनिटी 1947 के आफ्टरमैथ पर फोकस कर दिया। जहां अगर बात की जाए तो मेकर्स ने फर्स्ट लुक के साथ मोशन पोस्टर भी रिलीज किया और बस को लॉन्च के टाइम से ही बिल्ड किया जा रहा। प्राइमरी कास्ट में आपको नाम बता ही चुका, साथ ही इनके विक्रम कोचर, उपासना सिंह, इंदिरा तिवारी, छाया कदम, राहुल देव जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले। तो इंतजार रहेगा इस डिफरेंट कॉन्सेप्टेड कहानी की रिलीजिंग का। बाकी चर्चा उतरेंगे उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेगेसी शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं जुलाई 2026 की कुछ बढ़िया बढ़िया कहानियों के बारे में। जुलाई में कई बिग रिलीज हैं लेकिन लिस्ट में अल्फा और धमाल फो का डेट स्वैप काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा की अगर बात की 3 जुलाई 2026 को आई और धमाल 4 यानी धमाल की 4 की 17 26 पर शिफ्ट हुई और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई को। अल्फा आलिया भट्ट और शिवाजी बाग वाली वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स फिल्म पहले 10 जुलाई को थी लेकिन फिर से 3 जुलाई प्रीपोन कर दिया गया। धमाल कहानी को बीच में कहीं क्लैश ना हो इसलिए धमाल को 17 जुलाई फिक्स किया गया है जहां पे लीड में अजय देवगन है। और हॉलीवुड कहानी की बात करें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू जो 31 जुलाई को आने वाली यानी मंथ एंड में टॉम हॉलैंड की नेक्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म, तो ये 3 कहानियां जुलाई की सबसे बेहतरीन कहानियों में होनी है

वाली है जहां पर एक की रिलीज तो हो चुकी है, बाकी दोनों की रिलीजिंग का है इंतजार। ऐसी और चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: डांस बसंती।
1: लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉक्सिक के बारे में। टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स में यस लीड रोल में है और कास्ट में नयनतारा, कियारा आडवाणी, उमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मणि वसंत भी नजर आएंगे। फिल्म का टोन डार्क, स्टारलिस्ट और अडल्ट फेरी टेल जैसा बताया जा रहा है। बात करें यश फिल्म में राया का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी, नादिया, नयनतारा, गंगा, उमा कुरैशी, एलिजाबेथ, तारा सुतारिया, रबिका और रुक्मणि मालेसा के कैरेक्टर निभा रही हैं। फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रहे हैं। यश का KGF 2 के बाद मेजर कमबैक प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़े लेवल पर जिसको रिलीज किया जा रहा है। स्टोरी बिजनेस को काफी सीक्रेसी रखी गई है लेकिन टीजर फर्स्ट लुक से फिल्म का एम्बिशियस स्केल क्लियर होता है। टॉक्सिक गोवा के कार्टल वर्ल्ड, मोरल कॉन्फ्लिक्ट और पीयर फ्लेवर्ड स्टोरी टेलिंग के अराउंड बिल्ड होती है, इसलिए ये एक्शन के साथ करेक्टर ड्रिवन ड्रामा भी लग रही। बाकी चीजें तो रिलीजिंग के दौरान ही पता चलेंगी, ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा। उससे पहले एक और ट्रैक।
1: डार्लिंग आंखों से

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्म डॉनिक आरजे मॉर्निंग। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं मोपापा और आयुष्मान खुराना लीड रोल निभा रहे हैं। पोशंपा के पहले थिएटरिकल कोलैबोरेशन है जहाँ फिल्म को समीर सक्सेना डायरेक्ट कर रहे हैं। रिलीज 19 फरवरी 2022 फाइनल की गई। मेकर्स ने इसे जनरल बेंजिंग थिएटरिकल एक्सपीरियंस बताया लेकिन स्टोरी और सपोर्टिंग कास्ट को अभी सीक्रेट रखा गया। फिल्म का फोकस विजुअली डिस्टिंक्ट सिनेमा एक्सपीरियंस देने पर। जहां बात करें ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोनों के मुताबिक मोपापा वर्ल्ड वाइड 19 फरवरी को रिलीज की जाएगी। जहां पर अगर बात की जाए आयुष्मान की मोपापा में अब कौन कौन सी स्टार्स होने वाले यानी स्टार कास्ट एग्जैक्टली क्या होने वाली ये जानना हर कोई चाह रहा है। लेकिन अभी मेकर्स ने इसे सीक्रेट ही रखा गया तो देखते हैं सीक्रेटली इस लॉक को कब ओपन किया जाता है। बाकी ऐसी चर्चा होंगी उससे पहले कॉर्डर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

उसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं मुसाफिर कैफे के बारे में। 24 जुलाई को उसी प्लेटफॉर्म पर विक्रम मैसी, वेदिका पिंचो, महिमा मकवाना लीड किरदार में कहानी लेकर के आ रहे हैं। ओजी ने एक हार्टफेल्ट रोमांटिक ड्रामा बताया है जो कंपेनियनशिप, लॉन्गिंग और सेल्फ डिस्कवरी पर बेस्ड है। टीजर में 3 ट्रैवलर्स की इंटरवेंज स्टोरी दिखाई गई है जहां चंदर, सुधा, प्रीति के बीच इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है और स्टोरी का सेंट्रल सेटिंग माउंटेन्स में चंदर का ड्रीम कैफे प्रोजेक्ट है। अरे मुसाफिर कैफे जो 24 जुलाई को आने वाला है, अर्लियर टीजर कवरेज में डेट कंफर्म नहीं की गई थी लेकिन फाइनली अब 24 जुलाई का वेट कर रहे हैं फैंस। मुसाफिर कैफे में कौन से मुसाफिर आएंगे और कैफे में क्या लजीज मिलने वाला, इसका रहेगा इंतजार। बाकी चर्चा उतरेंगे सुपर एक और ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: प्यार है इस खातर तेरे तक करया प्यार कोन्या, और सारी दुनिया में जागी टोली है तने जाट वर्गा मिलेगा यार कोन्या। और मैडम है दिन में सिपटा रात ने स्टूडियो में गावे, मने तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या, तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर की शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे में, जहाँ सिनेमा के कैलेंडर का हो चला है वक्त। आज बड़े उस सिंगर का जिसकी आवाज में पंजाबी की मिट्टी की खुशबू है, सूफी रंग भी और जबरदस्त एनर्जी। बचपन से जिस कलाकार ने अपनी गायकी से सबको हैरान कर दिया और बड़े होते होते बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गया। आज बर्थडे है उस सोलफुल एनर्जेटिक सिंगर का जिसका नाम है मास्टर सलीम। मास्टर सलीम को हैप्पी वाला बर्थडे, और उनके गाने हमारे दिलों में हमेशा यूं ही बसे रहते हैं, उनकी आवाज़ में एक अलग ही जादू। इनके बारे में बहुत चर्चाएं करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सुनाऊंगा कुछ गाने।

0: आजादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ सिनेमा के कैलेंडर में हम बात करें मास्टर सलीम की, जैन का असली नाम सलीम शहजादा है और उन्होंने म्यूजिक की तालीम अपने पिता मशहूर सूफी गायक उस्ताद पूरन शाह कोटी जी से ली। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी और इसी वजह से लोग उन्हें प्यार से मास्टर सलीम कहने लगे। पंजाब में जागरण सूफी और फोक म्यूजिक से शुरू हुआ उनका सफर, धीरे धीरे बॉलीवुड तक पहुंच गए। उनकी आवाज की खासियत है कि उसकी रॉ एनर्जी और सोलफुल अंदाज सबको भा जाता है। मास्टर सलीम ने बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक को कई यादगार गाने दिए। बात करें मस्त कलंदर, आहू आहू, हमको पीनी है और तू बदली जैसे गाने उनकी आवाज में एक अलग ही सूफी रंग और पंजाबी फोक को तड़का है जो हर गाने को खास बना देता। बॉलीवुड के साथ साथ उन्होंने डिवोर्स और पंजाबी एल्बम्स में भी अपनी खास पहचान बनाई। ऐसी उनके बारे में और चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले सुना देता हूं कुछ और बढ़िया बढ़िया से गाने।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों बात कर रहे हैं माशा सलीम के बारे में, जहां उनका आज बर्थडे है। और सिनेमा के कैलेंडर में अगर चर्चा की जाए तो ये सिंगर यानी कि मास्टर सलीम उन चुनिंदा सिंगर्स में से हैं जिन्होंने डिवोशनल म्यूजिक, पंजाबी फॉक और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग तीनों फील्ड्स में अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी उनके लाइव कॉन्सर्ट्स की एनर्जी देखने लायक होती है। उनकी पावरफुल वॉइस और स्टेज प्रेजेंस ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर देती है। मास्टर सलीम का कौन सा गाना या लाइव परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद है बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, अब यहाँ से वक्त तो चले जाने का। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह करूंगा चर्चा, तब सुन रहे रेडियो भारानी 89.6 FM को छठ।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

हर भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।

हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

छोरी बाबा। अरे कैसी गोरी गोरी पोती की दिखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो मिली छोरी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है।

बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स एंट्री मारते ही सुपरस्टार बन जाते हैं और कुछ सालों तक ऑडियंस के दिल में क्वाइटली जगह बनाते रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की, जो दूसरे वाले एक्टर हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। पंजाब का एक सिंपल लड़का जिसका असली नाम था जसजीत सिंह गिल, ना फिल्मी बैकग्राउंड ना इंडस्ट्री कनेक्शन, बस एक काम फेस और आंखों में मोस्टली ऑनेस्टी। 1996 फिल्म माचिस, गुलजार की फिल्म सीरियस सिनेमा, और उस फिल्म में एक यंग जिमी शेरगिल। रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट रियल। फिर आई एक फिल्म जिसने उनकी इमेज हमेशा के लिए चेंज कर दी, मोहब्बतें, राज आर्यन का वायलिन और उसके सामने एक इनोसेंट लवर करण। जिमी शेरगिल स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं करते थे, वो बस नेचुरली फील होते थे। और कैसे बने वो सबके फेवरेट, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: ये बॉलीवुड का सबसे अजीब रूल है, ऑडियंस आपको प्यार कर सकती है फिर भी इंडस्ट्री आपको सुपरस्टार नहीं बनाती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन चॉकलेट बॉय जिमी शेरगिल की। मोहब्बतें के बाद सबको लगा ये नेक्स्ट बिग रोमांटिक हीरो है। लुक्स थे, चार्म था, एक्टिंग भी थी, लेकिन 2000s का बॉलीवुड अलग था। वहां लाउड हीरोज चल रहे थे, जिमी सटल थे, रियल थे, और शायद इसी वजह से वो रेस में पीछे रह गए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, ऑडियंस का ट्रस्ट। चाहे मेरे यार की शादी है हो या फिर तनु वेड्स मनु, स्क्रीन पर आते ही फील आता था ये बंदा जेन्युइन है। जिमी शेरगिल को लोगों ने कभी वर्शिप नहीं किया, लेकिन कभी इग्नोर भी नहीं किया। शायद इसीलिए वो आज भी किंग होकर भी किंग नहीं है। करेंगे जिमी शेरगिल के बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: पाका छोड़ दूं किसे

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

बॉलीवुड हिस्ट्री में शायद कोई एक्टर इतनी बार ऑलमोस्ट सुपरस्टार नहीं बना जितनी बार जिमी शेरगिल बने थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। ऑलमोस्ट बिगेस्ट रोमांटिक हीरो, ऑलमोस्ट टॉप स्टार, ऑलमोस्ट लीड एक्टर एवरीवन रिमेंबर्स। और फनी बात, उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया, वो साइड रोल्स भी सेम सिंसेरिटी के साथ करते थे। और फिर इंटरनेट ने एक जोक बना दिया, जिमी शेरगिल हर मूवी में लड़की लूज कर देता है। ऑडियंस हंसी, लेकिन उस जोक के पीछे एक स्ट्रेंज सच्चाई भी थी। जिमी का ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी ही ऐसा था, सॉफ्ट, लॉयल, अंडररेटेड। वो बॉलीवुड के हीरो कम, ऑडियंस के दोस्त ज़्यादा लगते थे। और कैसे पंजाब ने उन्हें दिया दूसरा क्राउन, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप लोग सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली, जिनका एक मिनट भी बाबू शोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जब बॉलीवुड ने जिमी शेरगिल को पूरी तरह सेलिब्रेट नहीं किया, तब पंजाबी सिनेमा ने उन्हें किंग बना दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। और जिमी शेरगिल ने भले ही फिल्म माचिस में अपना रोल निभाया हो अच्छे से या फिर मोहब्बतें में, मगर उनको असली क्राउन पहनाया पंजाबी सिनेमा ने। जिमी शेरगिल ने पंजाबी फिल्म्स में एंट्री ली और वहाँ पिक्चर ही बदल गई। मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, दाना पानी, यहाँ ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं स्टार ट्रीट किया। और इंटरेस्टिंग बात, जिमी कभी ओवर द टॉप पंजाबी हीरो भी नहीं बने थे, उनका स्टाइल वही था, कंट्रोल्ड, क्लासी, नेचुरल। बॉलीवुड में वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड थे, लेकिन पंजाब में रिस्पेक्टेड रॉयल्टी। और शायद इसीलिए पंजाब सिनेमा में आज भी जिमी को किंग कहा जाता है। और इसी के साथ साथ कैसे जिमी के रूट्स आज भी लोगों के दिलों में घर बसा गए हैं, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ एक्टर्स ट्रेंड करते हैं, कुछ एक्टर्स टाइम सर्वाइव करते हैं। जिमी शेरगिल सर्वाइव नहीं हुए, वो साइलेंटली रेलेवेंट रहे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। बॉलीवुड एक फास्ट इंडस्ट्री है, यहाँ हर फ्राइडे नए फेजेस आते हैं, नए स्टार्स, नए इन्फ्लुएंसर्स, नए नेक्स्ट बिग थिंग। और इस नॉइज के बीच में एक एक्टर है जो कभी लाउडली अटेंशन डिमांड नहीं करता। नाम है जिमी शेरगिल। ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज, ना फेक लार्जर देन लाइफ इमेज, ना सोशल मीडिया पर ओवर ब्रांडिंग। फिर भी जब भी उनका नाम आता है, ऑडियंस के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिमी शेरगिल सिर्फ एक्टर नहीं लगते, वो रियल इंसान लगते हैं। उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, कभी हार्ट ब्रोकन लवर, कभी इग्नोर्ड हस्बैंड, कभी लॉयल दोस्त, कभी वो बंदा जो एंड तक सब सही करने की कोशिश करता रहता है। और शायद इसीलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी मोस्ट पीपल आरंट अल्फा हीरोज, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग, एग्जैक्टली लाइक जिमी कैरेक्टर। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जिमी शेरगिल कभी सीन स्टील करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन समहाउ वो याद रह जाते हैं। तनु एड्स मनु में देखो, जब मूवी में केओस था, कॉमेडी थी, लाउड कैरेक्टर्स थे, लेकिन जिमी का कैरेक्टर काम, मैच्योर और हर्ट, और ऑडियंस साइलेंटली उसके साइड पर थी। इंटरनेट ने मीम्स बना दिए, हर मूवी में जिमी शेरगिल की बंदी चली जाती है। फनी था, लेकिन उस जोक ने उन्हें और रिलेटेबल बना दिया, क्योंकि ऑडियंस को लगा ये बंदा हम जैसा अनलकी है। और ऑनेस्टली किसी एक्टर के लिए ये बहुत रेयर चीज़ होती है। पीपल डोंट जस्ट वॉच हिम, पीपल फील बैड फॉर हिम। पर पंजाबी सिनेमा में उन्होंने जो रिस्पेक्ट अर्न की, वो भी ओवरनाइट नहीं आई थी, सालों लगे, कंसिस्टेंसी लगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईगो कंट्रोल। कई एक्टर्स जब लीड हीरो फेज से बाहर आते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन जिमी शेरगिल उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी डिग्निटी के साथ किए, नेगेटिव शेड्स भी किए, कॉमेडी भी की, सीरियस रोल्स भी किए, वो अडेप्ट करते गए। और यही डिफरेंस होता है फेमस एक्टर और लास्टिंग एक्टर में। आज अगर आप किसी भी एज ग्रुप के मूवी लवर से पूछो जिमी शेरगिल कैसे लगते हैं, तो उनका आंसर यूजुअली सेम होता है, अंडररेटेड, अच्छा एक्टर है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। और किसी एक्टर के लिए ये रिस्पेक्ट बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि स्टारडम टेम्पररी होता है, लेकिन गुडविल वो सालों साल चलती है। जिमी शेरगिल ने शायद बॉलीवुड का बिगेस्ट थ्रोन कभी नहीं जीता, लेकिन उन्होंने एक और रेयर चीज जीती, ऑडियंस का ट्रस्ट। और फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर फेमस हो सकता है, लेकिन हर एक्टर अपना सा नहीं लग सकता। तो ये थी जिमी शेरगिल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

कभी कभी लाइफ ना सीधे आंसर्स नहीं देती, वो सिर्फ एक सिचुएशन हमें देके छोड़ जाती है और बोलती है अब डिसाइड तुम करो भाई, और वही डिसीजन जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना देता है या फिर भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। खैर, इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ आपकी गीत। और आज जो कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ वो किसी ब्रांड की कहानी नहीं है, वो किसी करोड़ अरब के बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक फैसले की। सो वेलकम टू बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं यहाँ उन लोगों की बात करती हूँ जिन्हें दुनिया आज सक्सेसफुल कहती है, लेकिन जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे शुरू के फेज में सिर्फ कंफ्यूजन देखा था, सिर्फ फियर, सिर्फ अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनप्लग्ड एक ऐसा शो है जहां सक्सेस को सेलिब्रेट करने से पहले हम स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली सक्सेस तब मीनिंगफुल होती है जब हमें पता हो उसके पहले क्या क्या टूटा था। वो मोमेंट जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी से हाँ बोल के नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ दरवाजे के हैंडल पर था पर दरवाजा अभी खुला नहीं, अगला कदम क्या होगा, वो दरवाजा खुलेगा या बंद रहेगा, और जो डिसीजन लिया गया क्या वो सही साबित होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ आपको बने रहना होगा मेरे शो में जिसका नाम है बिजनेस अनप्लग्ड। अगले लिंक में उस कदम के बाद की कहानी बताऊंगी जहां सोच सिर्फ अपनी नहीं रहेगी बल्कि पहली बार हकीकत से टकराएगी। सो स्टे ट्यून्ड।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और कभी आपने सोचा है कि देश का बिजनेस बैकबोन बनता कैसे है? फैक्ट्रीज से, ब्रांड से नहीं, बल्कि लोगों की जिद से। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका नाम लेने से पहले थोड़ा सा रुकना जरूरी लगता है। इसलिए नहीं कि नाम थोड़ा मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि नाम के साथ वक्त जुड़ा हुआ है। आज मैं बात करने वाली हूँ घनश्याम दास बिरला के बारे में, यानी कि जीडी बिरला। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का नाम नहीं है, ये एक दौर का नाम है। वो दौर जब इंडिया अपनी पहचान ढूंढ रहा था और कुछ लोग सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि पूरे देश का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे। जीडी बिरला किसी शॉर्टकट का हिस्सा नहीं रहे, किसी ओवरनाइट सक्सेस का एग्जाम्पल नहीं। वो उस जेनरेशन से आते हैं जहाँ चीजें धीरे बनती थीं, पर गहरी बनती थीं। और आज जब हम बिरला ग्रुप बोलते हैं ना, तो लोग कंपनीज देखते हैं, पर मैं आज कंपनीज की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की जब बिरला एक जिम्मेदारी थी, ब्रांड नहीं। जीडी बिरला ने बिजनेस एक ऐसे वक्त में शुरू किया था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था, पर उस सिस्टम में इंडियन बिजनेसमैन को सिर्फ एक रोल दिया गया था, सप्लायर्स का। डिसीजन लेने का हक वो उनके लिए नहीं था, पर जीडी बिरला ने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो इंडस्ट्री भी इंडियन होनी चाहिए और कंट्रोल भी। ये सोच आज सिंपल लग सकती है, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। उनके सामने सिर्फ बिजनेस चैलेंजेस नहीं थे, उनके सामने सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स का डाउट, परमिशंस का डिले और हर कदम पर ये फीलिंग कि आप आउटसाइडर हो। और यहीं से उनके स्ट्रगल की असली कहानी शुरू होती है, न सिर्फ पैसे कमाने के स्ट्रगल बल्कि इज्जत के लिए स्ट्रगल। जीडी बिरला ने अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की अपनी टर्म्स पे नहीं, सिस्टम के बीच रहकर, और हर स्टेप पर उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडियन एंटरप्रेन्योर सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, लीडर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके कदम बढ़ते गए, प्रेशर भी बढ़ता गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सिंबल बन रहे थे। और जब आप सिंबल बन जाते हो ना, तो आपको चूज करना पड़ता है, चुप रहना है या स्टैंड लेना है। और जीडी बिरला के सामने एक ऐसा डिसीजन आने वाला था जो सिर्फ उनके बिजनेस को नहीं बल्कि उनके पूरे सफर को डिफाइन करता है। आज मैं कहानी को यहीं रोक रही हूँ क्योंकि अगला कदम सिर्फ बिजनेस का नहीं है, वो कदम ब्रिटिश सिस्टम के सामने सीधा खड़े होने का है। वो कदम लिया गया या फिर रोका गया, और उसके बाद क्या जीडी बिरला का रास्ता और मुश्किल हो गया, ये सब आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद इस गाने के बाद। तो गाना सुनिए, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ जीडी बिरला के बारे में। कभी कभी ना जब इंसान के डिसीजन बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है ये सब अचानक हुआ होगा, पर सच ये है कोई भी बड़ा डिसीजन कहीं ना कहीं बचपन में ही तय हो जाता है, क्यों है ना। और आज मैं जीडी बिरला के उस हिस्से की बात करना चाहती हूँ जहाँ से उनकी सोच ने शेप लेना शुरू किया था। वैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन बचपन के बारे में बात करना भी तो जरूरी है ना दोस्त। वो वक्त जब उनके पास पावर नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। घनश्याम दास बिरला जी का बचपन किसी पैलेस में नहीं गुजरा, ना ही किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्फर्ट था। वो एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आए जहाँ पैसा इम्पोर्टेंट था, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन। उनके घर में बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट का जरिया नहीं माना जाता था, बल्कि बिजनेस एक जिम्मेदारी था, एक वर्क था, और ये चीज उनके दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई। उनके एडुकेशन भी सिर्फ डिग्री तक लिमिटेड नहीं रही, वो चीजों को देखते थे, लोगों की सुनते थे और फिर क्वाइटली अपना कंक्लूजन बना लेते थे। जीडी बिरला ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ मेहनत से ही नहीं चलती, दुनिया पावर स्ट्रक्चर से चलती है। और ब्रिटिश इंडिया में पावर का मतलब था कंट्रोल, कौन डिसाइड करेगा, कौन रूल बनाएगा और कौन सिर्फ फॉलो करेगा। ये सवाल उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेसमैन के नहीं, एक इंडियन के तौर पर भी उठ रहे थे। शायद इसीलिए जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तब वो सिर्फ मार्केट नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम भी देख रहे थे। और जब सिस्टम को आप समझ लेते हो ना, तब उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर पाते हो। और यहीं से हम उस मोमेंट के पास आ जाते हैं जहां पिछले लिंक में हम रुक गए थे। जीडी बिरला के सामने एक चॉइस खड़ी थी, एक तरफ था चुप रहकर ग्रो करना स्लोली सेफली, दूसरी तरफ था बोलना, स्टैंड लेना और कंसीक्वेंसेस फेस करना। और ये चॉइस सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, ये चॉइस थी आइडेंटिटी की। क्योंकि अगर वो चुप रहते तो शायद उनका बिजनेस चल जाता, पर उनकी सोच वहीं रुक जाती। और अगर वो बोलते तो रिस्क था कि सिस्टम उन्हें टॉलरेट ना करे, परमिशन डिले हो जाए, प्रोजेक्ट सटक जाए और प्रेशर बढ़ जाए। इस डिसीजन के वक्त उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, वो वैल्यूज जो बचपन से उनके साथ थी, वैल्यूज जो उन्होंने घर से सीखी थी, एडुकेशन से समझी थी और एक्सपीरियंस से और स्ट्रांग हुई थी। और फिर उन्होंने वो किया जो उस दौर में बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पिक्चर के लिए सोचा, पर इसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आए, एक्चुअली इसके रिजल्ट सबसे पहले उनके खिलाफ गए। और यहीं से जीडी बिरला के फेस का सबसे अनकंफर्टेबल फेस शुरू हुआ, वो फेस जहां प्रिंसिपल्स और प्रोग्रेस टकरा जाते हैं। आज मैं इस कहानी को इसी पॉइंट पर रोक रही हूं क्योंकि अगला लिंक सिर्फ स्ट्रगल नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कि जब आप सही होते हो तब भी सिस्टम आपको कितना टेस्ट करता है। क्योंकि जीडी बिरला का स्टैंड उनके बिजनेस को स्लो कर गया, फिर उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग कर गया। ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, तब तक आप सुनते रहिए बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

डीनो जेम्स की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और इसी जिंदगी हमें तुरंत पनिश नहीं करती, वो बस टाइम ले लेती है। जी डी बिरला के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इन्होंने जो स्टैंड लिया था उसके रिएक्शन तुरंत नहीं आए, पर जब आए वो धीरे धीरे हर तरफ से आए। ब्रिटिश सिस्टम ऐसे काम करता था, डायरेक्ट नो नहीं बोलता, वो रुकावट डालता था, डिले करता था, आपको थका देता था, परमिशन अटकने लगी, फाइल्स मूव नहीं होती थी, मीटिंग्स कैंसिल होती थी, और हर बार रीजन एक ही होता, प्रोसेस। पर जी डी बिरला जानते थे ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये मैसेज है। मैसेज ये है कि तुम अपनी लिमिट्स भूल रहे हो, और जब सिस्टम आपको ये याद दिलाने लगे ना, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। लोगों ने एडवाइस देनी शुरू कर दी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों को अलग रखो, ज्यादा बोलना जरूरी है क्या? और ये एडवाइस गलत भी नहीं थी, क्योंकि रियलिटी ये थी कि जी डी बिरला के पास बहुत कुछ दांव पे लगा था, उनकी फैक्ट्रीज, उनके लोग, उनकी रेपुटेशन, और उनके साथ उन लोगों का फ्यूचर जो उनके साथ काम कर रहे थे। और यहीं से प्रेशर सिर्फ बाहर का नहीं रहा, प्रेशर अंदर का भी हो गया। कभी कभी ना सबसे मुश्किल सवाल बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। क्या मैं ज्यादा दूर आ गया हूँ? क्या मेरी सोच मेरी जिम्मेदारियों से बड़ी हो गई है? जी डी बिरला एक ऐसे बिजनेसमैन थे, हाँ, पर वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो जानते थे अगर उनकी वजह से एक भी फैक्ट्री बंद होती है तो उसका बोझ सिर्फ उन पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने हर डिसीजन और ज्यादा सोच के लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक और चीज चल रही थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज उनको क्लोजली देख रहे थे, कौन मिल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा आइडिया किस मीटिंग में बोल रहा है। जी डी बिरला समझ गए थे ये बिजनेस सिक्योरिटी नहीं है, ये कंट्रोल है। और जब कंट्रोल और ज्यादा टाइट हो जाता है तो सबसे पहले आपको फ्रीडम से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इसी फेज में उनके करीबी लोग भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गए। अब थोड़ा रुक जाते हैं ना, बाद में देखेंगे, और शायद यहीं पे कहानी का सबसे लोनली फेज शुरू होता है, क्योंकि जब आप बिल्कुल गलत भी नहीं होते और बिल्कुल सेफ भी नहीं होते तो आप अकेला पड़ जाते हो। जी डी बिरला के सामने अब एक नया सवाल खड़ा था, बिजनेस को बचाया जाए या प्रिंसिपल्स को। और ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं था, इस सवाल का जवाब उनके पूरे एम्पायर की डायरेक्शन डिसाइड करता। और आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। आज हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ चीजें दिख रही हैं पर बोली नहीं जा रही। जीडी बिरला के आसपास सब कुछ पहले जैसा ही लगता था। फैक्ट्रीज चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, फाइल्स मूव हो रही थी, पर जो चीज मिसिंग थी वो थी राह की क्लैरिटी। सिस्टम ने उन्हें रोका नहीं, बस इतना किया कि आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। और जब ऐसा होता है ना तो समझ आ जाता है कि ये सिर्फ डिले नहीं है, ये एक सिग्नल है। जीडी बिरला इस सिग्नल को इग्नोर करने वाले लोगों में से नहीं थे। इन्होंने बोलना कम कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और ये साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं था, ये साइलेंस उनके डिसीजंस में भी आ गया। इस फेज में इनके सामने एक टेंशन नहीं थी, इनके सामने जिम्मेदारियों की एक पूरी लाइन खड़ी थी। वो लोग जो उनके फैक्ट्रीज पर काम करते थे, वो फैमिलीज जो इनडायरेक्टली उनके हर डिसीजन से जुड़ी हुई थी। जीडी बिरला के लिए ये कभी सिर्फ बिजनेस नहीं रहा। इसीलिए जब सिस्टम इन्हें प्रेशर में ला रहा था तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं सोच रहे थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे थे। और इसी बीच उनके दिन का एक हिस्सा नंबर से निकाल कर कॉन्वर्सेशन में चला गया। ऐसी बातें जो न्यूज़पेपर में नहीं छपती, ऐसी मीटिंग्स जहां सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती, वहां बात होती है इंडिया के फ्यूचर की, इंडस्ट्री की डायरेक्शन की। और इस बात का डिसीजन लेने का हक किसी के पास होना चाहिए। जीडी बिरला आप सिर्फ बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन को समझने लगे थे। और जब आप एक बार ये समझ जाते हो ना कि आप सिस्टम के लिए सिर्फ एक नाम नहीं रहे, तो फिर न्यूट्रल रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि अपनी कोशिश को और ज्यादा गहरा कर दिया। और शायद ये खामोशी ही थी जो सिस्टम को अनईजी कर गई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि जीडी बिरला क्या बोलेंगे, सवाल ये था कि वो क्या करेंगे। तो अब आगे का रास्ता सीधा नहीं है, पर एक बात क्लियर है, अब जो भी होगा वो बिजनेस का हिस्सा नहीं होगा। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। स्टे विद मी।

स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। और आज मैं उस इंसान की कहानी को खोल रही हूँ जिसके नाम के साथ सिर्फ बिजनेस एम्पायर नहीं जुड़ता बल्कि एक सोच, एक प्रिंसिपल और एक लेगेसी जुड़ती है। जी डी बिरला के डिसीजन सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए नहीं थे, वो डिसीजन थे पूरे देश की इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए। जहाँ पहले इन्होंने खामोशी चुनी थी, अब उनकी स्ट्रेटेजी ने शेप लेना शुरू किया। रिस्क बहुत था, रेजिस्टेंस और ज्यादा थी, पर जी डी बिरला ने अपनी वैल्यूज और विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फैक्ट्रीज ने नाम किया, टीम्स ने फॉलो किया और धीरे धीरे सिस्टम को भी समझ आ गया कि ये इंसान सिर्फ सोच के लिए नहीं पूरे इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी, इन्होंने एक बात समझ ली थी, सक्सेस सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं होती, वो होती है जब आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और फिर भी दुनिया आपको चैलेंज करती है। जी डी बिरला ने ये सीखा और ये उनकी स्ट्रेंथ बनी, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, सटल एक्शन और कंसिस्टेंसी। और ये जर्नी, ये स्ट्रगल और कैलकुलेटेड करेज, ये उनको लेगेसी बनाता गया। और जब आप इस कहानी के एंड पे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं, जो डिसीजन जी डी बिरला ने लिए, क्या वो सिर्फ बिजनेस के लिए थे या कुछ ज्यादा, कुछ टाइमलेस के लिए? यही वो मोमेंट है जहां आप खुद फील करेंगे, समझेंगे और आप इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि इम्पैक्ट कभी लाउडली अनाउंस नहीं होता, वो सटल और लास्टिंग होता है। और ऐसे ही एक इंसान का स्ट्रगल, एक विजन और एक लेगेसी हमारे सामने खड़ी होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी कुछ हटके। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

कभी ऐसा हुआ है प्लेट में सब कुछ हो, रोटी सब्जी दाल, पर फिर भी कुछ मिसिंग लगे। और फिर एक चमचा चटनी आए और पूरा खाना सडनली कंप्लीट हो जाए। इतनी छोटी सी चीज पर इतना बड़ा इम्पैक्ट। वो कहा है कि जिंदगी भी थोड़ी सी फीकी लगती है कभी कभी, एक चटनी सी बात हो तो स्वाद बदल जाता है। 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और आज कल्चर कारवा में बात होगी उस साइड हीरो की जो कभी सेंटर में नहीं था, पर बिना उसके कहानी अधूरी सी लगती थी। जब बात कर रहे हैं चटनी की, तो आइए चलिए जानते हैं चटनी का इतिहास। अब बात करें चटनी, तो ये नाम ही इंटरेस्टिंग है। ये वर्ड चटनी से आया, मतलब पीसा हुआ मिक्स। इंडिया में शादियों में लोग फ्रेश हर्ब्स, स्पाइसेस और फ्रूट्स को पीस कर इंस्टेंट फ्लेवर बनाते आए हैं। और जब बात करें ब्रिटिश लोगों की, तो जब ये इंडिया आए तो वो चटनी का स्वाद लेकर गए और उसे दुनिया भर में पॉपुलर बना दिया। आज भी मैंगो चटनी यूरोप तक फेमस है। अब बात कर रहे हैं चटनी की, तो जो घर की रसोई में बना वो दुनिया के मेन्यू तक पहुंच गया। कल्चर कारवा में वापस आकर जानेंगे चटनी बनाने में आखिर सिलबट्टा का कितना बड़ा रोल है, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए।

0: जान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
5: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: like making love songs.
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर.
2: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो. लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना.
3: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो.
2: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो. सो बी कॉन्फिडेंट.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि। और बात जब चटनी की हो तो सिलबट्टा वर्सेस मिक्सर इमोशन प्लस प्रोसेस दिखाता है। पहले दौर में चटनी सिलबट्टे पर पिसती थी, हर इंग्रेडिएंट धीरे धीरे एक दूसरे में घुलता था और इसमें सिर्फ टेस्ट नहीं मेहनत और पेशेंस भी मिक्स होता था। और आज मिक्सर है, सेकेंड्स में चटनी रेडी। पर क्या वो सेम फील देता है? कभी कभी पेशेंस और प्रोसेस ही स्वाद देता है। वो कहा है कि जल्दी में बने स्वाद में वो बात नहीं होती जो धीरे धीरे पिसे हुए एहसास में होती है। जब बात कर रहे हैं चटनी की, तो चटनी कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ लाती है ढेर सारे फ्लेवर्स। तो आइए चलिए जानते हैं फ्लेवर्स ऑफ इंडिया यानी कि डाइवर्सिटी। इंडिया में हर रीजन की अपनी चटनी है। फिर बात करें साउथ इंडिया, कोकोनट चटनी। बात करें नॉर्थ इंडिया, धनिया पुदीना चटनी। फिर आगे चलकर जाए महाराष्ट्र तो लहसुन चटनी। और वहीं अगर बंगाल आए तो आम और टमाटर चटनी। यानी कॉन्सेप्ट एक ही पर हर जगह अलग कहानी। इंडिया में टेस्ट भी लैंग्वेज की तरह बदलता है। जब बात कर ली फ्लेवर्स की, तो वापस आकर बात करेंगे टेस्ट का साइंस और बैलेंस क्या कहता है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: मिक्सिंग इन द हाउस।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंजली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज की कहानी हमें ले आई है एक ऐसे जायके की तरफ जिसके बिना खाना एकदम अधूरा है। बात कर रही है चटनी की। तो जब चटनी की बात करें तो टेस्ट का साइंस और बैलेंस कैसे रह सकता है? चटनी का मैजिक आखिर है क्या? चटनी का मैजिक है बैलेंस, यानी थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा। ये हमारे टेस्ट बड्स को एक्टिव करता है और पूरे मील को इंटरेस्टिंग बना देता है। इसलिए एक चम्मच चटनी पूरे खाने का हीरो बन जाता है। और जब बात करें इस जायके की तो ये अक्सर हमें घर की यादों तक ले जाता है। घर में जब आज भी चटनी बनती है ना तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दादी सिलबट्टे पर पीस रही होती थी और हम बस उसका टेस्ट लेने के लिए वेट करते थे। चटनी सिर्फ फूड नहीं, ये मेमोरी है। वो कहा है कि हर घर की एक खुशबू होती है, कभी रोटी की, कभी चाय की और कभी एक छोटी सी चटनी की। चटनी की बात करें तो ये जायका हाल फिलहाल का नहीं, ये तो उस दौर की बात है जिस दौर में शायद चटनी के बिना खाना अधूरा था। और आज धीरे धीरे ये थोड़ी मॉडर्न हो गई है। अब मॉडर्न ट्विस्ट क्या आया है इस बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक एंजॉय कीजिए।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
5: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं चटनी के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं जायके को आज का मॉडर्न ट्विस्ट कैसे मिला। आज रेस्टोरेंट्स में चटनी भी डिजाइनर हो गई है। कीवी चटनी

एवोकाडो चटनी या फिर फ्यूजन फ्लेवर्स। पर अगर बात करें असली स्वाद तो वो अब भी घर की सिंपल चटनी में ही है, इसलिए शायद चटनी को आज भी हिडन हीरो कहा जाता है। चटनी कभी मेन डिश नहीं होती, पर बिना इसके मील इनकम्प्लीट लगता है। बिल्कुल जिंदगी के कुछ लोगों की तरह जो फ्रंट में नहीं होते पर सब कुछ उन्हीं से कंप्लीट होता है। वो कहा है कि हर कहानी में हीरो जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइड रोल ही कहानी बना देता है। चटनी भी ठीक उसी तरह से एक रिमाइंडर है कि छोटी चीजें भी बड़ा इम्पैक्ट लाती है, एक चम्मच और पूरा मूड चेंज। वो कहा है कि जिंदगी के स्वाद को समझना हो अगर तो चटनी से सीख लेना कम होकर भी कैसे सबसे ज्यादा महसूस हुआ जाता है। और अगली बार जब प्लेट में चटनी आए तो उसे साइड में मत रखना, थोड़ा सा मिक्स करना, शायद जिंदगी का स्वाद भी बदल जाए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर से मिलेंगे कल्चर कारवा में, एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। जीब्रा क्रॉसिंग का

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: ये है रेडियो महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: सो गाइस कैसे हो आप सब। आज तो फ्राइडे है ब्रो और इतनी जल्दी से टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो मंडे था और अभी फ्राइडे भी आ गया, देखो ना कितनी तेजी से टाइम बीत रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ और फ्राइडे का इंतजार मैं हमेशा करता हूं। आई डोंट नो व्हाई, कोई सैटरडे संडे एक्साइटिंग नहीं होता, मेरा नॉर्मल से रहता है। तो बस ये बताने आ गया था कि मैं आ गया हूं और अभी बस मैं यूं गया यूं आया गाना चला रहा हूं आप लोगों के लिए। डीनो जिम्स की आवाज में एक गाना है, विशलिस्ट काफी अच्छा है, सुनिए इस गाने को और अपने लाइफ को मोटिवेट कीजिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मौसम तो सुबह से ऐसा हो रहा है ना, मतलब मन कर रहा था कि फिर से बारिश आ जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि देखो उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं बस यही कहूँगा, मेरी आवाज़ भी इसलिए लटक रही है क्योंकि सच में उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी उमस की। वैसे ऑल्दो कम है उमस आज, बट मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिन में एल नीनो दोबारा से एक्टिव हो रहा है। एल नीनो क्या है सब कुछ बताऊँगा, रुको ज़रा सब्र करो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। और भाई लोग, फ्राइडे आज तो कोई तो प्लान्स होंगे आप लोगों के, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी कोई प्लान्स नहीं है, घर बैठूंगा आराम से, यहां से जाऊंगा और घर चले जाऊंगा। बट अभी 3 घंटों के लिए आप सभी के साथ आ गया हूं। तो अगर आप लोगों के भी कोई प्लान्स नहीं है तो आपको बता दूं, पहली बार अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो अगले 3 घंटे आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी पता, देखो 1 घंटे तक तो आप लोग मेरे साथ बातें कर सकते हो, जस्ट बिकॉज हमारे फरीदाबाद में हर जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, जस्ट बिकॉज। और ये मेरे को मीम याद आ गया, खैर मीम को भी साइड में रखते हैं, मीम याद आया तो इंस्टाग्राम की बात करूँगा। और इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर आया है जो कि लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है। खैर अच्छा क्या है अभी इंसानों के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। खाना कहाँ अच्छा है, हवा कहाँ अच्छी है, पानी कहाँ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो सब चीज़ों के बारे में करेंगे बात। और आज मैंने फरीदाबाद की पब्लिक से भी जानकारी ली, और इसी बीच में अगर आप लोगों को भी मुझसे बातें करनी है तो जी नंबर है मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ, बवाल। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, मैं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: पास में है इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों ने भी वो सुना था कि झलक दिखला जा गाना सुनते ही भूत आ जाते हैं? मैंने तो बहुत सुना था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बारिश जा चुकी है, बारिश चली गई, बारिश आ जाती है तो कोई गाना है तो बताओ यार, मैं भी गाऊंगा, फिर बारिश आ जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा इतना ज़्यादा बारिश से ऑब्सेस्ड क्यों है। देखो, बारिश अच्छी चीज़ है, नहीं ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं एक बात बोलूँगा कि हम लोग ना वाटर लॉगिंग को बड़ा ही कॉमन समझ चुके हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार वाटर लॉगिंग हो रही है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ढील दे चुके हैं, तो इन सबको नहीं करना। और इसी को लेकर मैंने आज बाहर जाके पब्लिक से भी बात करी। तो किन से बात करी सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, सुनाऊंगा मतलब आप लोगों को। मगर उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं फरीदाबाद के वेदर के बारे में। देखो, अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन कोई बारिश नहीं आएगी, मतलब आज रात तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था दिल्ली NCR में। बट आप लोगों ने भी देख लिया, अभी सुबह से लेकर अभी तक तो एक भी बूंद नहीं पड़ी है और आगे भी नहीं पड़ेगी। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिन अब आपको गर्मी ही गर्मी देखने को मिलने वाली है, यानी कि सैटरडे संडे मंडे की तो चलो बात हम लोग आके कर ही लेंगे, बट सैटरडे संडे हम लोग मिलेंगे थोड़ी ना। तो बता दूं आपको, सैटरडे और संडे अगर आपके कपड़े जो भीगे पड़े हैं उनको सुखाने का सही टाइम आ गया है, मतलब ये है कि सैटरडे और संडे की छुट्टी अब कपड़े धोने में जाएगी, क्योंकि धूप निकल जाएगी तो फिर उसके बाद कपड़े सुखाने का भी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और हाँ, आपको बातें सुनाऊंगा कि मैंने आज फरीदाबाद के लोगों से क्या बात करी, मगर इस गाने के बाद। सुनिए इस गाने को, AI मेड गाना है मगर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। रेडियो महारानी 89.6 पर, दिस इज द मोस्ट वांटेड मुंडा विद यू।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे ग्लास तो पीती जा सुन।
2: ना,

लो जी, मौसम विभाग का कहना है कि अब तो गर्मी ही गर्मी पड़ने वाली है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, आज रात को बारिश हो सकती है हल्की बुल्की, मगर फिर उसके बाद आने वाले दिन आपके लिए गर्म रहने वाले हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है, और इसके पीछे रीजन है। रीजन है सुपर एल नीनो। देखो, एल नीनो कर रहे थे हम लोग बहुत टाइम से। अप्रैल में मैंने बोला, मई में मैंने बोला, जून में मैंने बोला, एल नीनो है क्या? एल नीनो इज एन इफेक्ट जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पैसिफिक ओशन में, फिर उसकी वजह से इंडिया का मानसून कमज़ोर हो सकता है। तो बोला जा रहा है कि एल नीनो ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और फिर से कमज़ोर हो सकता है मानसून। और अगर मानसून कमज़ोर हुआ तो 10 से लेके 15 जुलाई तक, देखो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया कहूँगा मैं, और साथ ही साथ जो सेंट्रल इंडिया है, तो इन सब जगह पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो, मुंबई के लोग तो अभी परेशान है, बारिश की वजह से परेशान है। और अब अगर एल नीनो फिर से स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर बारिश रुक जाएगी। फिर देखते हैं कि परेशान होंगे या नहीं होंगे, या फिर खुश हो जाएंगे। खैर, अभी बता दूं, एल नीनो की वजह से मानसून हमेशा 100% की जगह 90% ही रह जाता है। और इस बार भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 90% या फिर 92% ही बारिश होगी, जो अक्सर मानसून में होती है। लास्ट ईयर मानसून में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बारिश हुई थी, बट इस साल एक्सपेक्टेड है कि 90% ही होगी बारिश। तो चलो देखते हैं। वैसे मानसून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसानों के लिए भी, और अगर मानसून कमज़ोर हो गया तो फिर फसलों पर असर पड़ सकता है। चलिए, ये सब चीज़ें बातें करते रहूँगा आप लोगों के साथ। और हाँ, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, डोंट यू थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं वाटर लॉगिंग के साथ? तो करिए, मैंने इसके बारे में बात लोगों से, सुनाऊँगा आप लोगों को मगर इस गाने के बाद।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पूछ अपने बारे में।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
3: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
2: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आज मैंने लोगों से बातें करी है वाटर लॉगिंग के बारे में, कि कैसे हम लोग कितने कंफर्टेबल हो गए ना कि पानी जमा हो जा रहा है। तो चलिए सुनिए इनकी बातें।
1: गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन शुरू हो चुका है और इसी सावन में एक बहुत ही मजेदार किस्सा हर साल हमारे साथ होता है। हमारे घर के बाहर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें हर बार पानी भर जाता है और या तो कोई स्कूटी डूब जाती है या कोई बच्चा गिर जाता है। तो इस बार हम सारी सोसाइटी वालों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही उसे भर दें, लेकिन हमारी जुगाड़ थेरेपी इस बार काम नहीं आई क्योंकि इस बार बारिशें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो इसीलिए वो जो ईंटें हमने डाली थी वो भी बेचारी उसी गड्ढे में डूब गई। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा शहर भी बहुत जल्दी डूबने वाला है।
2: हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल। और अगर बात करें वाटर लॉगिंग के बारे में तो रेनी सीजन में अगर देखो यार, किसी भी रोड की बात करो, मार्केट की बात करो, सेक्टर्स की बात करो, हर जगह पे वाटर लॉगिंग है ही। होता क्या है, बारिश आती है, हम लोग सड़कों पे जाते हैं, पानी भरा हुआ है, कल न्यूज़ छपती है, परसों डिपार्टमेंट की मीटिंग बैठती है कि यार इसके लिए क्या किया जाए। वाई नॉट कि हम लोग इससे पहले ही, बारिश से पहले ही कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करें। सब चीज़ें प्लानिंग्स कहते हैं होती भी है, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पे पानी दिखता ही है। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से चार टैंकर जाते हैं, उसको कैसे सड़कों से पानी कलेक्ट किया जाता है, भाई खाली करें, सब करें, कई जगह पे सड़क भी धस रही है, कुछ लोग सीवर के मेन होल खुले हैं, कुछ उसमें गिरते नजर आ रहे हैं, कहीं सड़क धस रही है, कितना ही ज़्यादा कुछ होते नजर आता है रेनी सीजन में, सिर्फ और सिर्फ रीज़न वाटर लॉगिंग।
3: मानव और जो ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलो ठीक है पानी भर रहा है, उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम एक और भी है कि मतलब उस पानी में जो मच्छर पनप रहे हैं, जो मच्छर जन्म ले रहे हैं, वो हमको बीमारी दे रहे हैं। पहले पानी भर रहा है, गंदगी हो रही है, स्मेल हो रही है, गंदा पानी है, उसको कैसे पार करना है, कैसे उस पानी को पार करके ऑफिस पहुँचना है, फिर उसके बाद मच्छरों से कैसे बचना है। कि हम इसलिए हम इतना रोड टैक्स भर रहे हैं कि हमें एक अच्छी रोड की फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाए।
0: तो ये थे हमारे फरीदाबाद के कुछ नागरिक जो अपना दर्द बयां कर रहे थे। और आगे भी आप लोगों के साथ कुछ और लोगों की बातें लेकर आऊंगा जिन्होंने बात करी है मेरे साथ सिटी में गार्बेज की। करेंगे उसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सुन भाई सुरेंद्र।
1: हाँ भाई सुरेंद्र।
0: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: आजकल हम लोग जहां पर भी देखते हैं, हम लोगों को नजर आता है कूड़ा कूड़ा और कूड़ा, और ऊपर से बारिश आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैंने आज बात करी कुछ फरीदाबाद के नागरिकों से और तीन लड़कियों से बात करी, तो उनकी आवाज मैं आपको सुनाता हूं।
1: गार्बेज को हमने इतना नॉर्मल इसलिए मान लिया है क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हम सोचते हैं कि कोई और साफ करेगा, हम ये भी सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है, बट ऐसा नहीं है। पब्लिक की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी की गवर्नमेंट की है। पब्लिक को भी अपने आसपास का कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि रोडों पे सड़कों पे ऐसे ही फेंक देना चाहिए।
2: तन्वी, और मैं बस तीन चार लाइनें ही बोलना चाहूँगी कि हमने गार्बेज को इतना नॉर्मलाइज क्यों कर लिया है, क्योंकि शायद हम इतने, हमारे अंदर इतना आलस आ गया है कि हमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम एक रैपर को उठा कर डस्टबिन में डाल सकें। मेरी आप लोगों से, सभी से यही एडवाइस है कि ये देश हमारा ही है, हम ही रहते हैं इसमें, तो इसको साफ और स्वच्छ रखें, जितना हो सके गार्बेज को डस्टबिन में डालें, ताकि जिससे कि बीमारियां जो हैं, गंदगी जो है वो ना फैले। धन्यवाद।
3: नमस्कार, मेरा नाम

0: पलक सिंगल है और मैं ये कहना चाहूंगी कि गार्बेज को हमने इतना नॉर्मलाइज इसलिए कर दिया है क्योंकि जब तक वो गार्बेज हमारे घर के आसपास या हमारे घर के अंदर नहीं होता तब तक हम उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अभी गली की बात है, दो पड़ोसन है आपस में लड़ रही थी कि तूने कूड़ा मेरी तरफ क्यों कर दिया। अरे भाई, कूड़ा पड़ा है बीच में, अगर तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे लोकैलिटी की, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसे उठा करके फेंक दो, उस पर लड़ना क्यों?
1: बिल्कुल, उस पर लड़ना क्यों है, इसके ऊपर तो बातें होती रहेंगी। क्योंकि देखो, फरीदाबाद की जब भी बात आती है ना, तो दो तीन चीज़ों के नाम ज़रूर आता है। एक तो हरियाणा का खाना, दूसरा फरीदाबाद की मेहंदी, और तीसरा है कूड़ा हर जगह हम लोगों को मिल रहा है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, बातें और गाने यूं ही चलते रहेंगे। मगर उससे पहले आपसे

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

चुन्नी मेरी रंग दे यार दे गड्डी दे नार दी। भाई वो दर्जी है, वो कलर लगाता है या फिर वो AI एक्सपर्ट है? नहीं, ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि आजकल लोग AI से कुछ भी कर दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड यू नो व्हाट, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहती है, चेंज होते रहती है, और ये चेंजेस आए हैं इस बार मेटा के इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर म्यूज इमेज नाम का एक फीचर लेकर आए हैं वो लोग, जिसमें AI पावर्ड इमेज जनरेटर है। मतलब आपकी इमेज बना सकते हैं विदाउट योर परमिशन। मतलब क्या हो सकता है, इंस्टाग्राम का कोई भी यूजर कोई भी पोस्ट करने के लिए पब्लिक फोटो जनरेट करवा सकता है, वो भी AI से। उसको क्या करना होगा, उसको बस लिखना होगा @ और फिर उसके बाद आपके अकाउंट का यूजर नेम अगर लिख दिया ना, तो फिर आपकी अकाउंट की जो DP है, DP मीन्स डिस्प्ले पिक्चर, वो जो DP है ना प्रोफाइल पिक्चर, उसका AI वर्जन बन जाएगा और वो यूज़ कर सकता है उसको कहीं पर भी पोस्ट करने के लिए। अब इसको लेकर सब लोग शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है, हमारी प्राइवेसी के बीच में आप लोग घुस रहे हैं। मगर मैं बता दूं जानी कि ऐसा नहीं है। आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो ना, तो प्राइवेसी तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर कोई भी मैसेज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम बैकएंड पे जो टीम बैठी है वो इजीली एक्सेस कर सकती है आपका अकाउंट, इजीली एक्सेस कर सकती है कि आपने किससे क्या बात करी है इंस्टाग्राम पे और आपने किससे क्या क्या मैसेजेस भेजे हुए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम चैट्स आर नॉट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप पर आता ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन, वैसा ही इंस्टाग्राम पे नहीं आता है। तो भाई लोग, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पर अब जो फीचर आया है, ये प्राइवेसी का उल्लंघन तो है, बट इसके साथ साथ आप लोग इस चीज़ को डिसेबल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताऊंगा, मगर इस गाने के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

इंस्टाग्राम ने अलाउ कर दिया है सारे यूजर्स को कि वो आपके यूजर नेम की एक एआई इमेज जनरेट करके पोस्ट कर सकते हैं पब्लिकली, तो इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं डर दी रब रब कर दी, और यही होएगा कि अगर हमें डर लगेगा तो हम भी रब रब ही बोलेंगे। हम बोलेंगे हे भगवान, हमारी इमेज का एआई इमेज नहीं बनवाना हमें। तो बता दूं आपको, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज का कोई इस्तेमाल ना करे और कोई उसकी एआई इमेज ना बनाए, तो आप लोगों ने करना क्या है? देखो, आपने अपने अकाउंट में जाना है और सबसे पहले अपने अकाउंट को पब्लिक से प्राइवेट कर देना है, क्योंकि प्राइवेट वालों के लिए ये फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब कोई और इंसान आपके प्राइवेट, अगर आपका अकाउंट है, तो आपकी इमेज का यूज़ नहीं कर पाएगा। और अगर मैं आगे बात करूँ तो सिंपल सी बात यह है, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो आपको जाना अपनी प्रोफाइल में, प्रोफाइल के बाद जाना है मेन्यू में जाना है, फिर उसके बाद आएगा एक ऑप्शन शेयरिंग एंड रीयूज। वहाँ जाकर आपको एआई को इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स का दोबारा इस्तेमाल करने, जो वो ऑप्शन आता है ना जिसमें लिखा हुआ आता है कि क्या एआई आपकी इमेज को रीयूज कर सकता है या फिर आपकी रील्स को रीयूज कर सकता है, तो उसको आपको बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है बस। और जैसे ही आप डिसेबल करोगे तो फिर आपके अकाउंट की कुछ भी चीज़ें रीयूज नहीं होगी, यानी कि आपकी प्रोफाइल पिक को कोई भी रीयूज नहीं कर सकेगा। बस इतनी सी सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर आप अभी भी गलतफहमी में हो कि आप इंस्टाग्राम पर किसी से चैट कर रहे हो और सब कुछ प्राइवेट है, तो भूल जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब आप चैट करते हैं वो कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, कोई भी एज इन जो बैकएंड टीम पर बैठे हैं वो, और उसके अलावा और भी हैकर्स भी तो बैठे हैं। तो चलिए, सबसे सावधान रहिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते रहिए। घूमने के प्लान्स बन रहे हैं तो ये गाना जरूर सुनिए।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

मोहम्मद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: व्हाट डू यू थिंक गाइस, लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनकी लाइफ देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कितनी लैविश लाइफ जी रहे हैं, इनको तो मज़ा ही आता होगा, ये लोग तो दिन भर एंजॉय करते हैं, ब्रांड्स इनके पास अपने आप भागे भागे आ जाते हैं, फ्री में इनको कपड़े मिल जाते हैं, फ्री में इनको खाना मिल जाता है, घूमना फिरना सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री में हो ही जाता है, और फिर उसके बाद कहीं पर अगर जाएं तो वहां पर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने से पैसा मिल जाता है, मगर हर बार ये चीज़ सही नहीं होती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अभी मैं ना सोच रहा था बैठे बैठे कि अगर कल को बाय एनी चांस आप लोग भी इस बात को सोचिए कि अगर हम लोग कल को फेमस हो गए तो क्या आप जिस आज़ादी के साथ अभी इस टाइम घूम पा रहे हो क्या कल को घूम पाओगे, क्या आप जो अपने दोस्तों के साथ हरकतें करते हो क्या वो हरकतें आप फिर से दोबारा कर पाओगे ओपनली बिना किसी के जज किए हुए? नहीं मेरी जान, नहीं कर पाओगे आप लोग। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि एक्टर्स की लाइफ और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी लाइफ ईजी नहीं है, क्योंकि हर पल हर सेकेंड उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, अगर आवाज उठाए तो दिक्कत, ना उठाए तो दिक्कत। अगर आपको लगता है ना कि उनकी लाइफ बहुत लैविश है तो एक काम कीजिए, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाइए और एक बार जाकर उनका कमेंट सेक्शन ओपन करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सब लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ऑल्दो मैं मानता हूँ काफ़ी सारे फैंस होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि फैंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो आपकी प्राइवेसी की भी कदर नहीं करते हैं। तो एक्टिंग इज़ नॉट ईजी, बींग अ सेलेब इज़ नॉट ईजी, और एक्टिंग की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली रश्मिका मंदाना इनका एक वीडियो आया है। रश्मिका तो पता है ना आप लोगों को, पुष्पा 1 पुष्पा 2 दोनों में जो लीड एक्ट्रेस थी, हाँ, तो रश्मिका का एक वीडियो आया है, शूटिंग का वीडियो आया है, क्या है उस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।
1: करनौजला इन द चाल

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: पाका छोड़ दूं किसे चीज

मेरे कहानी एडे डीप कोने मेरे कमरे मड़ंगा एडंगा क्लीन एंड नीट कोने मैंने रात ने सुननी बीटे मेरे तो लीड कोने आई एम जीओडी आना कदे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जगोरी मेरे तो जीप कोने।

सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्टिंग एंड सेलिब्रिटीज, लाइक एक्टर्स की लाइफ और सेलिब्रिटीज, मगर उसी के बीच में नाम लिया मैंने रश्मिका का। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। रश्मिका नेशनल क्रश कह लो उन्हें, क्योंकि एक टाइम पे तो थी यार नेशनल क्रश, और मैंने भी फॉलो कर रखा है अभी इंस्टाग्राम पे, बट रीसेंट जो वीडियो आई है ना उसको देखने के बाद पता चला कि नेशनल क्रश बनने के लिए भी और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भी इतनी मेहनत लगती है। यू वोंट बिलीव जो मैं बताने वाला हूँ। 20 घंटे अंडर वाटर फाइटिंग सीन शूट किया है, और ये पढ़ते ही मैं तो हैरान हो गया। मैं सोच रहा था एक नॉर्मल इंसान के लिए करना मुश्किल है, ये तो फिर भी एक्ट्रेस हैं, लैविश लाइफ जी रही हैं, अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई है, सब कुछ इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, मगर इनकी एक फिल्म आने वाली है मैसा, और उसके लिए अंडर वाटर सीन था। पहले तो मुझे लगा सिर्फ और नॉर्मल सीन होगा जिसमें शूटिंग के लिए टाइम लग गया होगा, बट नहीं, स्कूबा डाइविंग सीखी पहले, फिर उसके बाद इन्होंने अंडर वाटर पहले प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद अंडर वाटर फाइट सीन भी शूट किया, और दो दिनों में लगभग इन्हें 20 घंटे की शूटिंग करनी पड़ी, और इन्होंने बिना बॉडी डबल का इस्तेमाल किए हुए पूरा का पूरा शूट कंप्लीट किया है, क्योंकि ये भी

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।

0: जाएगी।
1: क्या
0: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
0: रोडवेज वाले।
1: ओके ओके।
0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
2: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ।
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
2: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

के जेरा सेरा, मतलब जो भी हो सो हो। मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने भी यही सोच लिया था कि जो भी हो सो हो, क्योंकि कल तो करो या मरो वाली स्थिति थी। बट मैं बेवजह ही जागा रात के 10 बजे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। एक्चुअली मैं 10 बजे खाना खत्म होता है, फिर उसके बाद मैं जागा रहा। मैंने सोचा चलो टीम इंडिया इस बार कुछ ना कुछ कमाल दिखा देगी, कुछ ना कुछ कमाल कर देगी। टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरी, अभिषेक शर्मा और साथ में वैभव सूर्यवंशी। फिर वही हुआ, 15 रन पे वैभव आउट हुआ, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा, फिर सब लोग धीरे धीरे धीरे धीरे करके आउट होते चले गए एंड टीम इंडिया लॉस्ट वंस अगेन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, दो सीरीज हार चुकी है टीम इंडिया और ना जाने ये क्या करना चाह रहे हैं। पहले तो आयरलैंड से हारे, चलो वो मैं बोलता हूँ तुक्का था, आयरलैंड वाले किस्मत से जीत गए। बट इंग्लैंड के अगेंस्ट नो डाउट पहला मैच जहाँ अच्छी बैटिंग करी थी वो बारिश से धुल गया था। सेकंड मैच हारे, तीसरा मैच हारे, अब तो चौथा मैच भी हार चुके हैं और सीरीज भी हार चुके हैं। अब सब जगह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव से कप्तानी छीन कर गलत किया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंडर साल 2024 में हम सब ने देखा कि हम लोग वर्ल्ड कप भी लेकर आए थे और अब वर्ल्ड कप फिर से आ रहा है T20 का, तो क्या उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं या फिर नहीं। ये सवाल तो सबके मन में है और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कैप्टन श्रेयस अय्यर की, क्योंकि कप्तानी पारी तो खेली है नो डाउट, बट टीम इंडिया इस बार बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना, वापस आकर और भी बातें करते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

सैटरडे और कल होने जा रहा है फिर से मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और अब मैं प्रे कर रहा हूँ कि देखो वाइट वॉश ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वाइट वॉश हो जाएंगे ना फिर तो हर जगह थूथू हो जानी है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और वर्ल्ड कप T20 आने वाला है साल 2026 में, मतलब आने वाला क्या है, गया है अभी, और हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट अभी मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि वर्ल्ड कप नॉर्मल वाला आने वाला है, तो कुछ लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो लोग कह रहे हैं कि ये प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए, सारे प्लेयर्स को टेस्ट किया जा रहा है। मगर टेस्टिंग एक मैच में होती है, दो मैच में होती है, तीन चार पाँच ऐसे हर मैच में टेस्टिंग थोड़ी ना होती है। तो सवाल तो उठ रहे हैं, और यहाँ पर जो कल कमेंटेटर्स थे पार्थिव पटेल एंड जतिन सप्रू एंड ऑल, वो सब लोग यही कह रहे थे कि क्या हो गया है टीम इंडिया को, क्या ये बॉलिंग खराब थी? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा बॉलिंग खराब थी, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और उसके बावजूद हम एक विकेट से ज़्यादा नहीं गिरा पाए, और इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर में इस टारगेट को चेज कर लिया था। तो यहाँ पर मैं सभी पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है कि क्या हुआ हम लोगों के साथ, मतलब क्या गलत हुआ, और कल के मैच में क्या कर सकते हैं, यानी कि कल सैटरडे को क्या कर सकते हैं। देखो हम सब अपनी अपनी राय तो ज़रूर देंगे ना, भले ही हमारी राय सुनी जाए या ना सुनी जाए, बट देने तो ज़रूर है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और हाँ राय के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और अभी आप सभी के लिए वीकेंड वाला गाना चला रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे है ब्रो, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

यू नो वॉट, आजकल ना बारिश की वजह से पानी जमा हो रहा है हर जगह और उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के मच्छर बढ़ रहे हैं। घर में अगर वो मस्किटो रिपेलेंट क्रीम नहीं है तो लेकर आ जाओ, स्टॉक भर लो, क्योंकि अगले 2 महीने मच्छरों की तादाद बढ़ने वाली है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप लोग भी सोच रहे होंगे फ्राइडे की शाम को गौरव कैसी बातें कर रहा है, फ्राइडे की शाम तो पार्टी वाली बातें होती हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे तभी तो पार्टी कर पाओगे, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मगर इसी के साथ साथ अपना ख्याल भी रखो, क्योंकि डेंगू और मलेरिया के मच्छर बढ़ रहे हैं और डेंगू के केसेस हम सबको पता है कि कितने ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो चलिए बस अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपका फ्राइडे तो मेरा भी तो फ्राइडे है, निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे की शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, गीत आ रही है वापस विद इश्क बाजिया, अच्छे अच्छे गाने लेकर आती है, सुनिए उसके शो को, इश्क बाजिया विद इश्क वाली गीत। फिलहाल आप सभी के लिए एक ऐसा गाना चला रहा हूँ जो कि आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा, साल 2010 तक ले जाएगा ये गाना। जग्गी डी की आवाज में सुनिए इस गाने को, तेरे नाल नचना, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और इस बड़ी जिंदगी को छोटी ना बनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
5: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं और दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है, क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है। दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें खामोशी से हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट, इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती है, जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कह दी हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो, और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है, ना कोई शिकायत है, ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था, तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात रात को अक्सर वो ख्याल वापस आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली नज्म पर बढ़ते हैं जहाँ वो मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

उसी खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखती है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हवाओं में बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है, उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती है, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जा में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते बल्कि हमारे रूह में उतर जाते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। यानी दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मैं।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात ये ही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती है। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो राग के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजिया। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई shaadi.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिब की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबुएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है, इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा

रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक।

0: का इस्तेमाल रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थीं जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, क्या कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ए काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: बचत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: कुछ हटके है।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: और झुमका
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गर्ल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और दीवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: English.
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
5: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Yours, पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: हमेशा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

सजदा है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे कील को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकट सिरा कूड़े मुराया मारे कील को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकट सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: ना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार ने।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा है।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: पथ ही है बस ऐसा पथ जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री रामसुख दास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करें

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर मोही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बस है जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले और वो दो घड़ी प्रेम से